एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भाई पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड।

0: नमस्कार। बिहान 7 बजे को आधी खोला खबर में प्रविधि कक्ष अशोक संग यहां स्वागत छ। आरती कुंवर संग जिला को पहला आवाज रेडियो आधी खोला को समाचार मूलक प्रस्तुति आधी खोला खबर एफएम 105.4 मेगाहर्ज र www.radioadikhola.org बाट लगन गरेर संसार को जुनसुक स्थान में बसेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूप में सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: यस आधी खोला खबरको साथमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भर पर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दरका लागि प्रतिबद्ध। हिमाल सुनचाँदी पसल उच्च क्वालिटीका आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टीका साथ खरिद बिक्री असल तपाईकै सुख दुःखको साथी हिमाल सुनचाँदी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।

खोला खबर को साथ में गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भरपर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि प्रतिबद्ध। हिमाल सुनचादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचादी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुनाको लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: सुनो सुना अले हम लोग आने में एक बजे के छाप
1: इस समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।